ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की पहली तिथि, तद अनुसार 23 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास,

0: और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिटियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है रामकुमार सौरभ की, संगीत है रामकुमार प्रभाकर का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। आइए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनते हैं मनहर उदास के स्वर में साईं भजन। रचना है पंडित के राजदान की।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मनहर उदास की आवाज में पंडित के राजदान की ये रचना।

अभी आपने मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति रचना सुनी और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में संत सूरदास जी की रचना।

लता मंगेशकर की गाइस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। भक्ति संगीत भक्ति

संगीत का कार्यक्रम अर्चना अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है और अब से थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर, सुबह 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 7 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। मंच है गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर और सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता। सुबह 8:15 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वतन का राग स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन करें लोकगीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर हमारे स्टूडियो से। उमंग NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा सुबह 11:00। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:30 पर सुनेगा सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा आज संसद की बैठक में हुई कार्यवाही की समीक्षा। रात्रि 8:15 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत और रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे आज विधानसभा की बैठक में हुई कार्यवाही की समीक्षा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे और रात्रि 9:00 सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। रात्रि 10:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर है सुरेश वाडेकर का।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आज ही के दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई रेडियो स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। उसके बाद का इतिहास बहुत लंबा है, उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत होगी। तो आज जो कार्यक्रम भूले बिसरे गीत है, इस कार्यक्रम में हमने जो नगमे चुने हैं, उन नगमों में जो सिनेमा में दिखाए गए हैं, उनमें दिखाया गया है एआई रे आकाशवाणी का स्टेशन या वो जगह जहां से प्रसारण हो रहा है। तो एक ऐसा ही गीत है, फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को लिखा है फारूक कैसर ने, संगीत

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, तो हमने वो गीत चुने हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि रेडियो से प्रसारण हो रहा है इन गीतों का और सुन रहे हैं लोग। तो ऐसा ही एक बहुत खूबसूरत नगमा फिल्म खामोशी से इसमें दिखाया गया है कि आकाशवाणी से प्रसारित हो रहा है ये गीत। एक बहुत ही खूबसूरत गीत, गुलजार का लिखा हुआ, हेमंत कुमार का संगीत, लता मंगेशकर का स्वर, फिल्म का नाम खामोशी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं।

0: और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अभिमान फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज में, अल्फाज मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत एस टी बर्मन का।

अभिमान फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

0: संस्थस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन् उपवेशने मन्त्रिमण्डलसचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीय दिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गंभीर विमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गंभीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पोंडेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य 8 दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे, शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 हैं, लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के ग्रंथ त्रिपिटक के विनय पिटक में एक सूत्र लिखा है, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सूत्र का अर्थ यह है कि हे भिक्खुओं,

शीतलता देता है। फूल अपनी सुगंध सभी को एक समान प्रदान करते हैं। धरती पर जब फसल उगती है तो सभी उससे अपना पेट भरते हैं। जब एक नदी बहती है तो उसके जल से सभी अपनी प्यास बुझाते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है कि आप अपने परिश्रम से कितने लोगों का भला करते हैं, कितने लोगों को वो सब देकर जाते हैं जिसकी लोगों ने कभी तमन्ना की थी। जैसे श्रोताओं, आज 23 जुलाई के ही दिन हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। भारत के वीर सपूतों के सामने हम इसीलिए नतमस्तक होते हैं क्योंकि इन वीरों ने देश के हर नागरिक के हक में अपनी आवाज बुलंद की थी और अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था देश हित के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की पीड़ा को समझना और उसको दूर करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं वही तो मनुष्य, महान मनुष्य कहलाते हैं। तो श्रोताओ, हमारी आज की सुबह सुबह का लबोलबाब यही है कि आज 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन पहला रेडियो का प्रसारण हमारे देश में हुआ था और रेडियो का ध्येय वाक्य ही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारी आकाशवाणी इंसान के सुबह से उठने से लेकर रात को बिस्तर तक सोने के बीच सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक ऐसा खजाना है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए सब कुछ है। एक पूरा समानांतर संसार हमारे सामने है जिसे हम देख तो नहीं सकते पर सुनकर सुंदर कल्पनाओं के आश्चर्य लोक में जा पहुंचते हैं। आज का दिन समर्पित है हमारे उन असंख्य श्रोताओं और उन कर्मठ प्रस्तोताओं के लिए जो ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह किए बगैर लगे रहते हैं इस महान कर्म में। रेडियो हम सबका वो साथी है जो न थकता है, न रुकता है, न ही समय की सीमा को जानता है। हर शहर, हर गांव, हर घर, हर दिल तक इसकी पहुंच है। रेडियो प्रसारण दिवस पर सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की हार्दिक बधाई। सुबह सुबह में आज बस इतना ही।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: कोरस ऐप पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इस ऐप की विशेषता यह है कि पशुओं को जो उत्पादन के लिए, शारीरिक रखरखाव के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए जो फीड एंड फॉडर की आवश्यकता होती है या आहार की आवश्यकता होती है, उसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए गोरस ऐप तैयार किया गया है। अभी हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो फीडिंग का पैटर्न है या पशुओं को आहार देने का पैटर्न है या तरीका है, वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक पद्धति अनुसार नहीं है, जिसके कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता कम होती है। और कई बार तो ये रहता है कि उनमें पोटेंशियल होता है दूध देने का, लेकिन अगर हम उनको आहार नहीं दे रहे हैं तो उस वजह से पशुओं का उत्पादन हम अधिकतम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा गोरस ऐप तैयार किया गया है। इसको हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसमें पशु के शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आहार की गणना की गई है, जैसे कि पशु किस स्थिति

0: में है, अगर वो गर्भावस्था में है तो उसके लिए उसका आहार अलग होगा, अगर वो दूध देने की स्थिति में है तो उसका आहार अलग होगा, वो दूध भी वो कितने महीने से दे रही है, इस प्रकार के कई पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर के आधार पर हमको अपने ये एंट्री करना पड़ती है। और जब हम ये सारी प्रविष्टियाँ गोरस ऐप पे कर देते हैं तो यह ऐप हमको यह बताता है कि हमको उसकी शरीर की अवस्था के अनुसार कितना फीड एंड फॉडर देना है या आहार देना है। ये ऐप हमसे ये भी पूछता है कि वर्तमान में हम क्या खिला रहे हैं, और जब हम ये सारी प्रविष्टियां कर देते हैं तो वो अपनी अनुशंसाएं ऐप देता है कि हम आहार ज़्यादा दे रहे हैं तो बता देगा, अलर्ट आ जाएगा, आहार कम दे रहे हैं तो अलर्ट आ जाएगा, और किस घटक को हमको बढ़ाना है, यदि हरे चारे को बढ़ाना है तो उसका अलर्ट आ जाएगा, यदि दाने को कम करना है तो उसका अलर्ट आ जाएगा, यानी कि जो वैज्ञानिक अनुशंसाएँ हैं उसके अनुरूप इस ऐप में हम सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे फायदा हमको ये होगा कि एक तो हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, पशु आहार की लागत को कम कर सकते हैं, और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऐप के संचालन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैरावेट से वो मार्गदर्शन ले सकते हैं, ताकि इसको कैसे चलाया जाता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
1: गोरस ऐप पशु पालकों का सहायक, इस विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत। जानकारी दे रहे थे नीलेश शाह।

अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री एली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडियानु

0: से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जिस पर गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
1: लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी।
0: प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में कुल तीन दिनों में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 1 में स्कूली बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने आए आगरमालवा जिले के विभिन्न अंचलों के 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थी देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को समझना, उसके मूल्यों को आत्मसात करना और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व के रूप में 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में गुरुजनों का स्वागत सम्मान, व्याख्यान उद्बोधन और छात्र शिक्षक संवाद जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि राज्य में खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत सांसद कप और विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर छतरपुर की क्रांति गोड को सम्मान स्वरूप 5,00,000 रुपए देने की भी घोषणा की।
2: स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 3,00,000 रुपए दुनिया में आपके माध्यम से नाम कमाया। बहुत
0: बधाई देता, बहुत अच्छा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर आज अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस मौके पर डॉ. यादव विभिन्न विभागों के लगभग 287 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही वे लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न निर्माण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे अपने पूर्ववर्ती अधिकारी की तरह ही उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ ये पद संभालेंगे। वहीं मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए।
2: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बारिश दर्ज की गई। कल सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम जिले में हुई। मौसम विभाग ने आज खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में भारत सहित 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। झाबुआ में बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने का भी आह्वान किया। मंदसौर में ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सीतामऊ और सुवासरा में बैठक लेकर सभी घरों तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कल आगरमालवा जिले के पर्यटन ग्राम भानपुरा पहुंचकर होम स्टे की साफ सफाई, सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप साज सज्जा और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील अंतर्गत ग्राम असरावद बुजुर्ग में राजस्व शिविर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिंगरौली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरगवा और कन्या शिक्षा परिसर बरगवा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में कर्तव्य फाउंडेशन रतलाम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 बजे। अभी आगे दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जी हाँ, रेडियो हम सबका साथी है, हम सबके दिल के करीब है। हर शहर, हर गांव, हर घर, हर दिल तक रेडियो की पहुंच है। और तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हम कुछ ऐसे चुनिंदा गीत लेकर आए हैं, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, जिसमें बात हो आकाशवाणी की। तो एक ऐसा ही आइकॉनिक गीत है, 1977 में एक फिल्म आई थी अनुरोध। इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब अपनी स्टारडम के पीक पर थे, पहले सुपरस्टार थे, तो उनकी स्टारडम का माध्यम बनता है आकाशवाणी। हालांकि जो फिल्म की स्टोरी है उस हिसाब से तो उसमें क्या है कि वो बहुत बड़े सिंगर बने हैं, लोग सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर उनके दीवाने हैं, उनको देखा नहीं है। तो किसी की दीवानगी कैसे आगे बढ़ती है ये बताया गया है आकाशवाणी में। और एक वक्त जब सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त आकाशवाणी इतना बड़ा माध्यम होता था कि सिर्फ उसको सुनने से, आकाशवाणी का कोई स्टूडियो देख ले, आकाशवाणी में अगर किसी की वार्ता हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। खैर, तो इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर ये गीत चुना है हमारे इन श्रोताओं ने, हमारे नियमित श्रोता हैं। वैसे तो हमारे सभी श्रोता बहुत ही दिल से आकाशवाणी को चाहते हैं, लेकिन इन श्रोताओं की फरमाइश पर अनुरोध फिल्म से ये गीत है। तो अनुरोध फिल्म से ये गीत सुनना चाहते हैं। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, गोपालगंज से

संदीप रोहताश, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल, बाबू प्रियांश, कुमारी भाव्या देवांगन, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, जयपाल यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, श्रीमती विमल अनेजा। इसी गीत की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ को फिल्म अनुरोध में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
3: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
4: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
2: बात बन जाए।
4: 287 मेरी चाय।
5: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
6: तो मिलेगी ना।
5: पर कैसे?
6: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
6: तो मिलेगी ना।
5: पर कैसे?
6: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर।
7: कार्यक्रम मनचाहे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की। ये सुनना चाहते हैं यादव कॉलोनी मधुकर शाह वार्ड से लक्ष्मण प्रसाद सेन, हरीश किशरवानी, परमानंद शर्मा, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार, ताज रेडियो श्रोता संघ लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से वनिता गंगराड़े, छोटू रोशनी अजय और कृष्णा देवी गंगराड़े, सिंघार तलाई खंडवा से राधे श्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, भारती यादव, शालिनी यादव और कामेश यादव। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर ट्यूबलाइट फिल्म से ये गीत, आवाजें कमाल खान, अमित मिश्रा और साथियों की, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत प्रीतम का।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
6: कार्यक्रम मंच है कि मैं सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म रेडियो से, रेडियो ऑन द एयर। जी हाँ, ये एक फिल्म आई थी और इसमें अभिनय किया था हिमेश शमिया जी ने। और बता दें कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो क्या बात है, रेडियो पर गीत है और हिमेश शमिया जी की आवाज़ में ये गीत, जो लिखा है सुब्रत सिन्हा ने और इसका संगीत भी दिया है हिमेश शमिया ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता, इन्होंने फरमाइश की है। ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, हमें लगातार पत्र के माध्यम से और SMS के माध्यम से ये गीत सुनना चाहते हैं। तो ग्राम बनेगा तहसील बंडा जिला सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया गौरव, राज आर्यन, कौशल दीप्ति। सदर बाजार सागर से मोहम्मद बशीर मकरानी, आसिफ मकरानी, साजिद मकरानी, इमरान मकरानी, अब्बास मकरानी, ईशान मकरानी, अनवर मकरानी, फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबेनूर मकरानी, साबरीन मकरानी, रुबीना मकरानी, तबस्सुम मकरानी, रिहान मकरानी। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झबर वाघे, तनुश्री आरोही, कान्हा वाघे। इसी गीत को सुनना चाहते हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कंवर। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर रेडियो ऑन द एयर फिल्म से ये गीत हिमेश रेशमिया की आवाज में।

मन का रेडियो बजने दे जरा। जी हाँ, ये गीत आपने सुना हिमेश रेशमिया की आवाज में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अली हैदर की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
4: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
5: तो मिलेगी ना?
4: पर कैसे?
5: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित का लिखा हुआ और उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम संगीत सरिता अभी आप सुन रहे थे।

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, सुनते हैं समाचार प्रभात।
5: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु

0: कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबंध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
3: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न।
2: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक

0: के संयुक्त निवेश से दो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइक्कम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
8: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल सेंटर फॉर WTO स्टडीज IIFT। This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
9: जूरिसप्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिसप्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन में उनके मैंशन होता है. इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल गवर्नमेंट जनरली.

0: कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड an important, it always had given importance to environmental preservation. So if we can see 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation, Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hai. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards jo hote hain, jo Water and Air Act ke under kaam karte hain, and EIA notifications jo ki Environmental Protection Act ke under se hi emanate karta hai. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. Mein, when we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner, ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights aur fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme supreme court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दी चंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के. वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना

0: शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए, साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस, मॉनिटरी कंपनसेशन, इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में, आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ, आर्टिकल 21 में देर वर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट। वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी, तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एम सी मेहता, ही वॉज अ बिग टाइम इन्वायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर। तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले, क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस। तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, एम सी मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर, इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज। सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे एनवायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द टी एन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया, जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए।
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्र नाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

स्वरों की यात्रा निस्सीम होती है। स्वर न भाषा के दायरों में सिमट पाते हैं और न ही सरहदें उन्हें बांध पाती हैं। लेकिन जब कोई साधक अपने सुरों में मातृभूमि का प्रेम, अपनी संस्कृति की गरिमा और अपनी आत्मा की तपस्या को एक साथ पिरो देता है, तब संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं रहता, वो वतन का राग बन जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसी विलक्षण स्वर साधिका का स्मरण, जिनकी आवाज में कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय ऊंचाइयां थीं और देशभक्ति की प्रखर चेतना थी, जिन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी एक राह बनाई और अपने स्वरों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संगीत मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को अपने वतन से जोड़ता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात कर्नाटक संगीत विभूति पद्म विभूषण डी के पट्टम्माल की।

के पट्टम्माल यानी दामल कृष्णस्वामी पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें एमएस सुब्बुलक्ष्मी और एमएल वसंत कुमारी के साथ कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त है। उनका जीवन संगीत, साहस और परंपरा को एक नई दिशा देने वाली प्रेरक कहानी है। डीके पट्टम्माल का जन्म 19 मार्च सन 1919 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता दामल कृष्णस्वामी दीक्षितार स्वयं संगीत के गहरे जानकार थे। उनकी माताजी का नाम राजम्माल था। उनकी माताजी भी अत्यंत सुरीली गायिका थीं। लेकिन ये वो समय था जहां महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत गहरी खिंची हुई थी। उन्हें घर की चार दीवारी के बाहर, यहां तक कि रिश्तेदारों के सामने भी गुनगुनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के भीतर छिपी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। वो अपने पिता की उंगली थामे संगीत सभाओं में जाती और वहां जो कुछ भी वो सुनती वो उनके बाल मन पर अंकित हो जाता। घर लौटकर वो अपनी तुतली जुबान में उन कठिन बंदिशों को हूबहू गाया करती। इस छुप छुप कर चलने वाली स्वर साधना में उनके भाई डी के रंगनाथन, डी के नागराजन और डी के जयरामन उनके सहयात्री बने। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मद्रास में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। प्रतिष्ठित रसिका रंजनी सभा में उनके स्वर गूंजे तो श्रोता मंत्रमुग्ध थे। लेकिन उस दौर में एक लड़की का सार्वजनिक मंच पर तंबूरा लेकर बैठना एक सामाजिक भूचाल से कम नहीं था। समाज ने उंगलियां उठाई, रूढ़िवादियों ने आंखें तरेरी, लेकिन स्वर की एक मधुर यात्रा आरंभ हो चुकी थी। मद्रास कॉरपोरेशन रेडियो की तरंगों पर भी उनकी आवाज गूंजी और समय ने देखा कि कर्नाटक संगीत का इतिहास बदल रहा है।

कर्नाटक संगीत जगत में डीके पट्टम्माल की आमद से संगीत जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत का इतिहास अब दो भागों में बंट चुका है, डीके पट्टम्माल के आने से पहले का इतिहास और उनके आने के बाद का इतिहास। इसी स्वर्ण काल में उनका परिचय महान संगीतकार और गायक पापनाशम शिवन से हुआ, जिन्होंने इस पवित्र नदी जैसी गायिका को अपने तमिल कृतियों का अमूल्य खजाना सौंप दिया। कर्नाटक संगीत के मंच पर जब पूरी तरह पुरुषों का प्रभुत्व था, तब पहली बार डीके पट्टम्माल ने मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हुए इस परंपरा को बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति दी, बल्कि रागम तानम पल्लवी जैसी अत्यंत कठिन और उस समय तक केवल पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस शैली में भी प्रस्तुति दी। उस समय तक पुरुष कलाकार ये मानते थे कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रागम तानम पल्लवी कर्नाटक संगीत की वो विधा है जहां गणित की सटीकता, फेफड़ों की असीम शक्ति और कलाकार की कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है। उस समय के पुरुष कलाकार ये मानते थे कि महिलाएं केवल सरल भक्ति रस से पूर्ण कीर्तन गा सकती हैं, लेकिन वो इस बौद्धिक चक्रव्यूह को नहीं भेद सकती। डीके पट्टम्माल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल रागम तानम पल्लवी को गाया, बल्कि संगीत के इतिहास की सबसे जटिल और लंबी ताल सिंहनंदन ताल, जिसमें 128 अक्षर यानी 128 मात्राएं होती हैं, तथा शरभनंदन ताल में ऐसी पल्लवियों का ताना बाना बुना कि बड़े बड़े मृदंग वादक भी चकित रह गए। उनकी प्रतिभा का इतना अधिक सम्मान था कि प्रसिद्ध मृदंगम वादक विद्वान पालघाट मणि अय्यर, जो कि परंपरागत रूप से केवल पुरुष गायकों के साथ ही संगत करते थे, उन्होंने डीके पट्टम्माल के लिए ये परंपरा तोड़ दी। उनकी गायन क्षमता को गुणीजनों ने बहुत मान दिया और उन्हें स्नेहपूर्वक डीकेपी अम्मा कहा जाने लगा। उनकी बेजोड़ तकनीकी महारत को देखकर कर्नाटक संगीत जगत ने उन्हें नया नाम दिया, पल्लवी पट्टम्माल।

सन 1939 में डीके पट्टम्माल का विवाह आर ईश्वरन के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी संगीत यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण साथी बने। डीके पट्टम्माल ने देश की स्थिति को देखते हुए अपने स्वर को राष्ट्र आराधना का माध्यम बना दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी तमिल फिल्म त्यागभूमि में पहली बार पार्श्व गायन किया। इस फिल्म में उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के क्रांतिकारी गीतों को अपनी आवाज दी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई और फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। तब ऑल इंडिया रेडियो मद्रास के स्टूडियो में डीके पट्टम्माल तंबूरा लेकर खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, देश में रोमांच फैल गया। भारत आजाद हुआ और डीके पट्टम्माल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का अमर स्वतंत्रता गीत गाया, आडवो में पल्ली पाडवो में आनंद सुतंतिरम, जिसका अर्थ था, आओ हम सब मिलकर नाचें, आओ हम सब मिलकर गाएं कि हमें वो पावन स्वाधीनता मिल गई है।

आवाज में देश की आजादी का वो पहला जश्न तैर रहा था। इस गीत ने डीके पट्टम्माल को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की साझी चेतना का हिस्सा बना दिया। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अनेक गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया, जो आज संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। डीके पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियों की सबसे प्रामाणिक संवाहक बनी। दीक्षितर की कृतियां अपनी विशेष गति, दार्शनिक संस्कृत और बेहद सूक्ष्म गमकों के लिए जानी जाती हैं। डीके पट्टम्माल ने इन कृतियों के मूल स्वरूप को इस तरह से सहेजा जैसे किसी धरोहर को सहेजा जाता है।

डी के पट्टम्माल को तमिल फिल्मों में गीत गाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने केवल भक्ति और देशभक्ति से जुड़े गीत गाना ही स्वीकार किया। फिल्म त्यागभूमि के बाद उन्होंने फिल्म इरुवर, रामराज्यम, वेधाल उलगम सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। डी के पट्टम्माल केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान संगीत गुरु भी थीं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। पिता के साथ संगीत सभाओं में गुणीजनों को सुन सुन कर ही उन्होंने संगीत सीखा था, लेकिन स्वयं उन्होंने अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित किया। उनके छोटे भाई डी के जयरामन ने उनके मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर संगीत कलानिधि सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्रवधु ललिता शिवकुमार को भी संगीत सिखाया, जो अक्सर मंच पर उनके साथ संगत करती थीं। और उनकी पौत्री और शिष्या नित्याश्री महादेवन आज कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। डी के पट्टम्माल को संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गान सरस्वती की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 16 जुलाई सन 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली, नमन ऐसी विलक्षण संगीत विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए केके और बॉब की आवाजों में देशी बॉयज फिल्म का गाना, कुमार के हैं बोल और प्रीतम के हैं तर्ज़।

अगला गाना हमने लिया है डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई इस फिल्म से। आवाजें हैं आकृति कक्कर और अपेक्षा दांडेकर की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: सुहानी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुना जाए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पीके फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल और तर्ज या रहमान की।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों ना हूँ बाबा करते हूँ।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम

0: नौजवान तीनों दिखा रहे हैं। सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
1: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जबड़िया जोड़ी फिल्म से, राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजें हैं, शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची के बोल, और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
6: तोहरी लच के जब कमरिया हसारा जी लाही लमू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजा हसन देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गाना। गीतकार थे शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: خیالوں میں
1: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे।
3: मां भाग रही थी मैं, काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले।

0: काला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना ये सोला साला चंदाना ऐ तेरे ख्याला चंदाना ये गोरे गाला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना ये सोला साला चंदाना ऐ तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों इसी रुपये की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम बोल दो बापू।
4: बोल दे बेटा।
5: बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया, सबसे भला रुपया हाय रुपया हाय रुपया भैया सबसे भला रुपया, बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपया।
6: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दीवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तुम्हां के पोते के अंदर बड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा।

0: महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।
1: बदकम्मा

0: vidrà.
1: Batcama, batcama, batcama.

0: ஆஷா பத்கம்மா பத்கம்மா
1: எங்கண்ணா எங்கண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
4: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
4: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
4: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आपको कॉल कर देखता ना।
4: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहला बोलना ना ऐसा बात। डाई बोला तुम आना गाना गाना आना।
5: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है। या बोला ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे हैं गाना गाना। चल देवी तुम बदाना बदाना।
2: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।
6: यह कच्चा

0: चतुर नार अम पकड़ कर रखेगा जे
1: मेरे मन के द्वार ये भूत जात।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक पे कैसे रहते जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हो मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल दी गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आज़ादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: अरे पहले तालियां।

0: की है यही आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाए।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

internet.

0: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
1: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम। ए

0: मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ। अरे
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर, कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा, वाचन सर प्रशांत सेंगर। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मंदसौर जिले में विकास, स्वास्थ्य, जनकल्याण, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और जन जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां लगातार चर्चा में रही। वहीं जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर इस वर्ष स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम के साथ नूतन स्टेडियम में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद सुधीर गुप्ता की मौजूदगी में हजारों लोगों ने इस दौरान सामूहिक योग अभ्यास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। जबकि जैन संत प्रणमय सागर ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को योग अभ्यास कराया। मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग पिछले पूरे महीने सक्रिय नजर आया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यहां 84 शिक्षकों को 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देकर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में तैयार किया गया। वहीं राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग 1.5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 1212 बूथ बनाए गए। अभियान से पहले जन जागरूकता रैली निकाली गई और बाद में जन प्रतिनिधियों ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान का प्रारंभ किया। इसके साथ ही दस्तक अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को विटामिन ए का घोल भी पिलाया गया तथा 31 अगस्त तक घर घर जाकर 1.5 लाख से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जाँच का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था भी इस दौरान सुनिश्चित की गई। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा डायरिया की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान इन दिनों चलाया। मंदसौर और नीमच के संयुक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य अमले को वाहक जनित रोगों की रोकथाम का भी प्रशिक्षण दिया गया। जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल की गई। स्थानीय सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को विद्यार्थियों में मानसिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता और आत्महत्या रोकथाम के विषय में प्रशिक्षित किया गया। जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण जागरूकता रैली निकाली गई, जबकि एड्स नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जांच पर भी विशेष जोर दिया गया। मंदसौर जिले में ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में भी कई नई पहल देखने को मिली है। स्वसहायता समूह से जुड़े उद्यमियों के लिए विशेष उद्यम पंजीयन अभियान चलाया गया, जिसमें उद्यम पंजीयन के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी भी दी गई। इसी दौरान विकसित भारत जी राम जी योजना का भी जिले में शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का दौरा भी मंदसौर में पूरे महीने चर्चा में रहा। उन्होंने पिपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में 1.77 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 32 कैश काउंटर दुकानों का लोकार्पण किया, जिससे किसानों को भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

गुड़बेली छोटी में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। वहीं गुर्जर बर्डिया में करीब 333 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का

0: योजनाएं, आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जिले में शिक्षा और युवा गतिविधियों में भी पूरे महीने उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दीक्षारंभ एवं प्रवेश उत्सव तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। मंदिर में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत सज्जा, पालकी यात्रा, शयन आरती, यात्री सुविधाओं और सौर ऊर्जा पैनल लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख था दीपक शर्मा का और वाचन स्वर प्रशांत सेंगर का। यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: फरमाइशी लोकगीतों के फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोता भैया बिन्नारों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और हम भैया जयशेखर। स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम राम, राम।
1: और लेते हैं जो पहलो फोन। हेलो
2: हेलो
1: भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
2: शिव प्रसाद, ग्राम बल्दुपुरवा, जिला पन्ना से सर।
1: मगर भैया आपकी बोली पन्ना जैसी तो नहीं लग रही है, तो हमें के पीछे का राज है वो बताओ हमारे लाने आप।
2: सर ये हमारा जो घर पड़ता है, गांव पड़ता है मेरा, तो बांदा जिला और पन्ना जिला के दोनों के बीच में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पन्ना है।
1: मगर बांदा में तो भैया बुंदेली बोलते हैं।
2: महोबा में बुंदेली बोली जाए तो बांदा में नहीं बोलते, बांदा में मेरे जैसे बोलते हैं।
1: तो भैया हमें जब बताओगे कर का रहे हो आप।
2: सर मैं BSF में हूँ सर, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ पे मुस्तैदी से भैया ड्यूटी कर रहे हो आप? उतई
2: ड्यूटी जी, अभी मैं तो ड्यूटी में हूँ सर, कैंप में।
1: अच्छा अच्छा, तो भैया का सावधानी रखा था आप अपनी सुरक्षा के लाने और अपने देश की सुरक्षा के लाने, सुबह और बता दो हमें।
2: बस अपना ड्यूटी करते हैं और बॉर्डर में रात में लाइट है।
1: हाँ हाँ,
2: तो बॉर्डर में घूमते रहते हैं।
1: हाँ हाँ,
2: राइफल लेकर के, और बस यही ड्यूटी है और अपने देश की सुरक्षा हो रही है इसमें।
1: और अपनी सुरक्षा के लाने कौन सी कोई कछु चीजें ऐसी लगाओ तो भैया जिनसे अपन को दुश्मन से कोई परेशानी ना हो?
2: ये ऐसा कुछ है नहीं, इस बॉर्डर में थोड़ा सा शांत टाइप का है।
1: अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है भैया, हम तो कहें अपने देश के सभी बॉर्डर शांत रहें और सब सुख चैन से रहें भैया, अपने पड़ोसी भी और अपन भी। अच्छा भैया, सुबह से क्या अपनी गतिविधियाँ शुरू हो जाते हैं, कितने बजे उठा तो अपने आप को फिट कैसे रखा तो?
2: जी सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे।
1: हाँ हाँ,
2: फिर ड्रेस व्रेस कर दिया, नहाया धोया, और इसके बाद फिर ड्यूटी के लिए तैयारी हो जाती है सर।
1: हाँ हाँ हाँ,
2: सुबह ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं 12 बजे तक के लिए। 12 बजे ड्यूटी समाप्त होती है, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: फिर वही रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, शाम को फिर रात में ड्यूटी फर्स्ट टाइम में 6 बजे से 12 बजे तक।
1: तो शिव प्रसाद भैया हमारे कार्यक्रम में एक अटका पूछा थे हमारे।
2: जी जी सर।
1: तो पूछ लें आपसे, समझ में आया आपको?
2: जी ये थोड़ा समझेंगे सर।
1: तो अटका कह रहा है कि बाबा सोवे जा घर में और पांव पसारे बा घर में।
2: दीपक है सर।
1: देखो भैया ये अटका के दो जवाब हैं और दो में से आपने एक दाव है और दो ही जवाब सही हैं। तो दीपक एकदम सही कह रहे भैया, और अगर दूसरे जवाब देते तो वो भी सही हो, तो अगर वो सही वालों देते तो अब बता दो कि लोकगीत कौन से सुनवा दे मैं आपको। भैया हरो जे हते अपने देश की सिपाही और इनको फोन हमसे बात कराते में कट गया है, मनो इनकी फरमाइश हम तक पहुंचती ओके पहले फोन कटो। सो हम इनको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक की आवाज में गाओ भाव जो बरसा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: जी सर, रामशंकर बात कर रहे हैं, ग्राम बीछई से।
0: अच्छा, तो रामशंकर भैया बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: बताओ भैया अपने बारे में, कछु का करत हो?
1: सर कछु नहीं मजबूरी करत है, मका की फसल लगा है सर, अभी पानी नहीं गिर रहा मैं।
0: अच्छा, मतलब खेती करत हो?
1: जी जी, किसानी।
0: हाँ, तो बहुत अच्छी बात है भैया।
1: सर लोकगीत सुन रहे तो?
0: नहीं, लोकगीत तो सुनवा है भैया, लेकिन कछु बातचीत तो कर ली जाए।
1: हाँ,
0: तो फसल के क्या हाल है भैया?
1: फसल पानी मांग रही है सर, पानी गिर नहीं रहा, 8 दिन हो गए हैं पहले।
0: भैया कितने एकड़ जमीन है अपनी?
1: अपने यहाँ तो 2-2.5 एकड़ है घर की।
0: तो मकई मका लगा दो का?
1: हाँ, मकई मका लगा है।
0: अच्छा, तो अब पानी नहीं गिर रहा भैया, तो क्या करो?
1: अब तो भगवान के भरोसे चल रही है गाड़ी सर। मोटर छोटे सब खोल के रख लेंगे अपन ने।
0: अब देखो भैया, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अपन ऐसी किस्मों को चयन करें अबे खरीफ में, अब हालांकि बुआई हो चुकी है बहुत से किसान भैयारों की।
1: जी सर।
0: कम पानी वाली किस्मों को चयन करें अपन, और निंदाई गुड़ाई कर देवे भैया, नमी को संरक्षित करवे के लाने।
1: जी।
0: और पानी गिर है भी भैया, जो मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं, हफ्ता 10 दिन में भैया पानी गिर है।
1: इतनी तो सहज है अपनी फसल।
0: बिल्कुल भैया,
1: अभी तो हरियाली है।
0: चलो भैया, तो अब बताओ के फरमाइश का है आज के कार्यक्रम में?
1: अरविंद सोनी को मिल जाए सर, मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करिए।
0: चलो भैया, आपकी फरमाइश हम पूरी कर दे हैं, आपके लाने हम अरविंद सोनी को गाओ भाव, जो लोक भजन तो सुनवा दे हैं।
1: जी सर।
0: और अब बारी आ गई भैया आज के अटका की।
1: जी सर।
0: सुनो ध्यान से भैया, कई बाबा सोवे जागर में और पांव पसारे बाघर में।
1: जो अटका तो सर हमने पहले सुनो जीवन, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मौका पे।
0: नहीं आ रहा ध्यान?
1: जी सर, आप ही बता दीजिए।
0: चलो भैया ठीक है, आप कार्यक्रम सुनते रहो, कार्यक्रम के अंत में हमारे बते हैं, और अब आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपके लाने सुनवा रहे हैं अरविंद सोनी को गाओ भाव, जो लोकगीत
2: मंद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो,
3: जयराम जी साहब। जयराम जी।
2: जयराम जी भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है। अपना नाम बता दो।
3: मैं सर जगत सिंह चरार बोल रहा है सर, ग्राम पिपली अवराई तहसील बेगौन जिला रहा है।
2: जगत भैया हमें जा बताओ कि पानी तो भैया बहुत ही कम हो रहा है।
3: हाँ सर, हम आए थे तो अच्छा पानी गिरा, तो वह शुक्र से खुलो है।
2: अच्छा अच्छा, शुक्रवार से खुलो है। तो भैया खेती वेती है अपनी?
3: हम की कराते हैं सर।
2: और हम तो जा रहा भैया, खेती नहीं भी हो और बारिश नहीं हो रही है भैया, तो उमस भी बढ़ जाऊ थे।
3: भारी गर्मी पड़ रही, हवा भी चल रही है, तो भी गर्मी लग रही सर।
2: हाँ, तो जगत भैया हमें जा बताओ कि बरसात में तो झरना फूट पड़ा होंगे आपके गांव के आसपास?
3: हाँ, रोडों के बगलों में हो।
2: हाँ, यानी जो देते भैया कि गर्मी में जब आदमी पानी को तरस जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाते हैं, तो अपन जब उम्मीद करते रिमझिम तो कम से कम गिरता ही रहे पानी, और आदमी खूब पिकनिक भी मना लेते हैं खुशी खुशी परिवार सहित, रिश्तेदारों के संग, दोस्तों के संग घूमे भी निकल जाओ थे भैया। मनो ये बार तो अपन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है भैया,
3: गर्मी से पानी नहीं गिर रहा।
2: हाँ,
3: जैसे हम आए थे तो सर अच्छा पानी गिर गाओ, तो नदी कड़ गई, हर दिन नदी कड़ी 8 दिन तक रेगुलर गिरो।
2: ये तो अच्छी बात बता रहे भैया।
3: और सर अटका बोल देते ना, हम दिमाग में आने लगे।
2: अटका है भैया के बाबा सोबे जा घर में, पांव पसारे बाघर में।
3: हम बता रहे सर, वो है वो जो पहले जमाने मतलब कछु दिन पहला केवार में लगाते।
2: क्या लगाते?
3: लकड़ एक ऐसे लंगड़ के पेड़ा।
2: अरे वाह भैया वाह, बहुत ही अच्छी बात है भैया। और हम आपको बता देवे कि एक पहले जो श्रोता ने जवाब दो तो उनने एक दूसरा जवाब दो तो वो भी सही है, और जो भी सही है एक अटका के एक बार दो जवाब सही हैं।
3: जी सर।
2: तो अब बता दो भैया जगत भैया के लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
3: तेरो सुना दू रामचरण यादव को।
2: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
4: हेलो।
5: हेलो।
4: हाँ भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोग गीत सुने।
5: हाँ, मैं ग्राम पोस्ट बरेटी से बोल रहा हूँ, टुंडे अहरवा।
4: टुंडे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
5: बहुत बढ़िया सर।
4: बताओ भैया, क्या हो रहा हो?
5: घर ही वैसे बोनी होनी करके पर।
4: बोनी हो गई?
5: हाँ।
4: अच्छा, और भैया पानी यानी कैसे गिर रहा हो?
5: पानी तो अब सर अब 4-5-6 दिन से नहीं गिर सर।
4: ब्रेक लग गया भैया मानसून में।
5: हाँ जी।
4: तो भैया फसलें कैसी हैं अबे?
5: फसलें तो अभी सही जमना जम हुए हैं।
4: अच्छा, जमे आओ।
5: हाँ।
4: तो भैया पानी की कमी से दिक्कत तो नहीं हो रही
5: ना? अभी तो नहीं हो रही अभी हाल में।
4: हाँ। अब भैया उम्मीद है हालांकि हफ्ता में पानी गिर है।
5: हाँ, पानी तो गिरेगा सर।
4: तो जब तक भैया अपन निंदाई गुड़ाई को काम कर लीजिए।
5: और का
4: है ना। चलो भैया, और सब बढ़िया है?
5: और तो बिल्कुल सब बढ़िया है सर।
4: तो टुंडे भैया आप बताओ फरमाइश।
5: अच्छे से लोग की सुनने सर मुझे तो
4: नहीं। सब अच्छे से लोग की था भैया, आप तो कलाकार को नाम बताओ।
5: जी हमें दुरुस्त याद है, लोग की सुनने कोई भी सुनवा दो।
4: चलो भैया ठीक है, आपकी फरमाइश तो पूरी कर दे अभी।
5: जी जी।
4: और अब बारी आ गई अटका की।
5: अब बने तो सर बता देंगे।
4: बन जाओ चाहिए भैया।
5: हाँ।
4: तो सुनो ध्यान से भैया।
5: हाँ सुन रहा है।
4: कई बाबा सोवे जागर में।
5: हाँ।
4: और पाँव पसारे बाघर में।
5: बागोर तो नहीं सर?
4: है
5: बागोर।
4: क्या सो बागोर? बागोर का कहा?
5: हाँ बोलियो सर फिर से।
4: कई बाबा सोवे जागर में और पाँव पसारे बाघर में।
5: नहीं आ रहा समझ में सर।
4: नहीं आ रहा हो? चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनाते रहो। कार्यक्रम के अंत में हम और बते हैं, और अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं द्रौपदी यादव और उनकी सखियों को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।

0: हेलो
1: जी सर, ग्राम देवपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
0: भैया देवपुर कहाँ पे है अपनो?
1: जी सर, जी छतरपुर जिले में है।
0: अच्छा, तो क्या कर रहे हुकुम भैया?

0: या?
1: जी बस खेत पे बैठे हैं सर जी, खेती हो चुकी है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो अपने मड़िया भैंसे हैं, आई अपने खेत देखें।
0: अच्छा, तो अच्छा।
1: बारिश हो रही।
0: और भैया बारिश की हालचाल?
1: बारिश तो सर जी 8-8 दिन से भाई नहीं, आप जरूरत भी आ गई फसल की लाने।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो अब भाई नहीं है, गर्मी पड़ रही।
0: अच्छा भैया, तो भैया रोजी रोटी तो अपनी यही है, पशुपालन और कृषि?
1: जी जी बिल्कुल, यही से जुड़े हैं सर।
0: हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है भैया। तो भैया हमारे तक कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हो आप?
1: फोन कहें लोग की सुने, जो किसान वाणी सुनते हैं ज्यादा गुरुवार को फोन भी लगाते हैं आकाशवाणी में।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया उसे हमारे कार्यक्रम से फायदा कौन कौन से भाई, तो हमें बताओ थोड़ा सा।
1: जो विशेषज्ञ बताते हैं अपन, वही विधि से अपन खेती करते हैं, तो उसमें लाभ मिलता है।
0: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि आपको लाभ भी मिल रहा है। तो आप जानते ही हो कि हम एक अटका भी पूछा था भैया अपने कार्यक्रम में।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये बार हम अटका पूछ रहे हैं आपसे कि बाबा सोवे जाघर में और पांव पसारे बाघर में।
1: नहीं
0: आ रहा भैया,
1: नहीं समझ में आप आई।
0: चलो भैया कोई बात नहीं, तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा है सुनने आपको?
1: जी लोकगीत राम सहाय पांडे का सेवा सुना देना सर जी।
0: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, राम सहाय पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: बसंत पटेल, बसिया गांगे।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: तो बसंत भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: बताओ भैया, क्या काम करा थो?
1: सर कछु नहीं, घूमत रहे थे।
0: कहाँ?
1: सर तमी सागर जाते काम पे, मजदूरी पे।
0: चलो तो बड़ी अच्छी बात है भैया। कौन सो काम करा थो मजदूरी में?
1: सर कछ नहीं, मिस्त्री के निकास मकान बना थे।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: बहुत अच्छी बात है भैया। तो मकान बनावे में भैया कौन कौन सी बातों को ख्याल रखा थो?
1: सर मकान बनाने में मुझकी बातों को ध्यान रखना पड़ा, जैसे ईट को ध्यान रखना पड़ा, ईट अच्छी छत रही की नहीं, और मसाले को, सीमेंट को, सब को ध्यान रखना पड़ा सर।
0: तो भैया जब बताओ के जो जुड़ाई के लाने मसालों बना थे, वो का हिसाब से बनाओ जात?
1: सर दीवार के साथ सुना, 6 इंची को, 3 बोरी को।
0: चिनाई के हिसाब से अलग बना थी, पलस्तर के हिसाब से अलग बना थी ये?
1: जी सर।
0: चलो भैया तो बड़े अच्छे काम से जुड़े हो आप।
1: जी सर।
0: और अब जा बताओ भैया के फरमाइश का है आपकी?
1: सर प्रभु सिंह अनुज की गाय भाई तजरी सुनवा दो।
0: अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छी फरमाइश करी है मौसम के हिसाब से।
1: जी सर।
0: कजरी आपको जरूर सुनवा दे हैं। और अब सुन ले भैया, आज को अटका।
1: जी सर।
0: बते हो?
1: जी सर, बोले तो बते थे।
0: तो सुनो भैया ध्यान से।
1: जी सर।
0: कई बाबा सोवे जा घर में।
1: जी।
0: वो पांव पसारे बा घर में।
1: बाबा सोवे जागर में?
0: गागर में नहीं, हमने कही बाबा सोवे जा घर में।
1: बाबा सोवे जागर में?
0: वो पांव पसारे बा घर में।
1: पांव पसारे बा घर में।
0: हाओ
1: संकेत दियो सर।
0: संकेत भैया ऐसा है कि पुरानी चीज है और घर की सुरक्षा से संबंधित है भैया।
1: सर वो नहीं बन रहा।
0: गांव खेरे में भैया पहले घरों में लगे रहते जी।
1: जी सर।
0: अब तो कम देख भी मिला तुम्हें।
1: सर हम तो नहीं बन रहा वो।
0: चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हम बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं प्रभु सिंह अनुज की गाय भाई जा कजरी।

0: हेलो
1: हेलो
0: भैया, फोन करें, लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो सोता संग, बस तेन बंडा भी नहीं कर लक्ष्मण को चाय वाले हो रहा था, चाय पी लो।
0: बस भैया, खूब चाय पियो। और अब तो चाय को सीजन आ गया है, गर्मी थोड़ी सी कम हो रही है मगर उमस बढ़ रही है।
1: हाँ, उमस तो बड़ा है, काय पानी नहीं गिरा जब तक। हाँ। दो चार पानी लगातार गिरना है।
0: बिल्कुल
1: सही है।
0: तो भैया हमें जब बताओ कि लोग बागों की रुझान का रेत है चाय के लाने, उमस जब हो जाते तो फिर दिक्कत सी हो जाती बहुत ज्यादा।
1: नहीं, उमस में हो जाता पी जाता आदमी, गर्मी हो गर्मी हो रहा।
0: और चाय कम कब पिया थे?
1: जब बस खा रहा लगा था, जब कम होते तो ना पानी गिर जाए तो ना पिए आदमी।
0: हाँ, जा भी बात एक सही गई है, आवे में दिक्कत हो जाती है।
1: हाँ, ना तो अपनी 12 महीने।
0: अच्छा भैया, हमें एक चीज बता दो कि जब आप लोग चाय बनाओ तो बड़ी स्वादिष्ट चाय बनाते हैं, और जब घर पे बनाते हैं तो वो स्वाद काय नहीं आता है। तो हमें आज रहस्य बता दो कैसे बनाओ तो चाय, तो हमारे सब श्रोता सुन लें कि अच्छी चाय कैसे बनने हैं।
1: चाय देखो क्या है, घर तो जैसी चाय बना रहे पपन हो पे आना तो नहीं है कोई।
0: हाँ,
1: घर ही के पीने तो जैसी चाय बना लेते हैं, पानी भी ज्यादा डाल रहे, दूध से बनती है चाय, दूध की मात्रा चाना अच्छी।
0: हाँ,
1: चाय नहीं रहे बिल्कुल कच्ची।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया, अब हम ऐसी चाय बना के देखें और हमारे सभी श्रोता। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं अटका। अटका बहुत सरल है।
1: हाँ।
0: अटका कह रहा है कि बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में।
1: ये तो हमें समझ में नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं भैया, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुना देवे।
1: जयंत विश्वकर्मा का सुनवा देना लोकगीत शेरो।
0: ठीक है भैया, सुन लो भैया। हाँ, अपनी फरमाइश पे जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव जो लोकगीत।
1: हाँ।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोग गीत सुने।
1: जी सर,
0: कुआ बोल रहे भैया, आपनो परिचय दो।
1: हम छोटन से सोलंकी ग्राम कुआला से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, छोटन से सोलंकी।
1: जी
0: तो छोटन भैया, कितनी उम्र हो गई अपनी?
1: 26 सितंबर हम 60 के पूरे हो जाए।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: तो का काम काज से जुड़े भैया?
1: हम खेती करा थे सर।
0: अच्छा, तो बुआई वुआई हो गई?
1: जी सर, बुआई तो हो गई, लेकिन जो पनवेसरो पानी नहीं भाया सर।
0: अब का करिए भैया, पनवेसरे पानी के लाने हैं, अपने ही जिम्मेदार हैं भैया। अपन देखो पर्यावरण के लाने कितनों नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिनों दिन वृक्षों की कटाई कर रहे हैं।
1: हम तो अपने खेत की मेड़ों पे कछु भाटी में वृक्ष रखाया है।
0: बहुत अच्छी बात है भैया, आप वृक्ष लगाते हो
1: है?
0: तो सभी को लगाओ चाहिए भैया, अकेले आपके लगाए से और हमारे लगाए से नहीं होने कछु।
1: कछु नहीं होते, अब अकेले लगाते एक आदमी कुछ नहीं कर सकता।
0: चलो भैया ठीक है, आप अच्छो काम कर रहे हो वृक्षारोपण करके, और जा बताओ के आज फरमाइश का है?
1: इंद्रपाल विश्वकर्मा को लोग गीत सुनवा दे सर।
0: चलो भैया ठीक है, इनको गाओ भाव एक वर्षा गीत आपको सुनवा दे हैं।
1: जी सर।
0: और अब बारी आ गई अटका की।
1: जी सर।
0: तो अटका बताओ भैया।
1: अब बन है तो बता दे अभी।
0: हाँ देखो, उम्मीद कर रहा भैया, आप बुजुर्ग हो तो आपसे उम्मीद करा था भैया कि जा चीज आपने देखी भी हुई है और बता भी पे हो। कई बाबा सोवे जाघर में और पाँव पसारे बाघर में। अरे वाह,
1: लंगर यार सर, लंगर।
0: लंगर मतलब का?
1: जो किवारों में लगा उठे।
0: हाँ
1: किवारों में लगा दी थे बेड़ा।
0: बेड़ा आपने अब कही सही, तो बिल्कुल सही उत्तर बताओ भैया आपने ये अटका को। बेड़ा अपन एक कहने लगते एक बड़ो सो लट्ठा हो तो
1: जी,
0: जो किवारों में भैया सुरक्षा के लाने लगाओ जात। तो
1: हम आए थे तो सर्दी हाथ में तो लंगर ही किए थे।
0: हाँ कहूँ लंगर कहे थे भैया, कहूँ बेड़ा कहे थे।
1: जी सर।
0: लेकिन भैया सही नाम तो बेड़ा ही है।
1: बेड़ा तो आई।
0: चलो बहुत अच्छो लगो भैया आपसे बात करके।
1: जी सर।
0: और अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं, इंद्रपाल विश्वकर्मा को गाओ भाव।

0: तो जयशेखर भैया, अपन कार्यक्रम के समापन की तरफ आ गए हैं।
1: बिल्कुल भैया, मनो हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि अटका कहा तो और अटका को जवाब कहा तो भैया बड़ी रुचिकर बात जा है कि आज की जो अटका है तो बाबा सोबे जा घर में और पांव पसारे
0: बाघर में।
1: तो भैया एक ही दो जवाब हो रहे थे और हमने दोइयों को मान्यता दी।
0: बिल्कुल भैया, एक और जवाब तो है तो दिया
1: हाँ।
0: तो एक श्रोता ने दिया भी बताओ
1: हाँ हाँ हाँ,
0: और एको जो गांव खेरे में चलते आओ है एको सही उत्तर बेड़ा भी है
1: हाँ।
0: जेको कछु जने लंगर भी कह रहे हैं
1: हाँ।
0: तो जो भी सही जवाब है
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
0: और बेड़ा को भी अपन समझा देवे भैया, दिया तो सब जने जानत है
1: हाँ, कि एक कमरा में रख दो और दरवाजे खुले हैं तो वो कमरा तक रोशनी चली जाओ।
0: और बेड़ा ये हिसाब से सही है भैया कि दरवाजे की सुरक्षा के लाने पहले के जमाने में भीतर तरफ दो ही दीवालों में छेद बनाए जाते और लकड़ी के बड़े से लट्ठा को उन छेदों में फंसाओ जाते, तो जैसे दरवाजे की एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा हो जाती। तो वो हिसाब से एको सही उत्तर बेड़ा भी है। तो जो है तो आज को अटका और कछु श्रोताओं ने एको सही उत्तर भी बताओ। और अब हो रही है चलबे की बेरा, तो चलबे

0: नारायण तिवारी
1: और हम भैया जय शेखर
0: और कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जय शेखर की। और जय शेखर भैया अब अपन सभी श्रोताओं से ले रहे हैं आज्ञा, वो कराते हैं राम राम, राम।

फोन करें, लोकगीत सुनें। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
3: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
3: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
3: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
3: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
3: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
3: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
3: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
3: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
3: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
2: जी,
3: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
2: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है।

0: इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन

0: सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की।
0: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओ, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को।
3: पकड़ लेंगे।
4: और ये पकड़ लिया।
2: इसी भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
3: चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
2: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
3: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
5: जी महाराज, जी महाराज।
3: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
6: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
2: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गाँव वालों ने सोचा, क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
3: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
7: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
8: जी महाराज।
7: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
3: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
7: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
3: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
7: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
3: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
8: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।

0: सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
1: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
2: आज मैं राजा बनूंगी।
3: आज मैं राजा बनूंगा।
4: आज तो मैं राजा बनूंगा।
5: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
6: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
2: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
7: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है
8: कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
2: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
8: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
3: हमें तो देखा है।
9: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
2: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
10: महाराज की जय हो। जय हो। महाराज की जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
11: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है, और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
1: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
0: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन,
12: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
1: चोरी?
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
1: हाँ, ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
12: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
12: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
1: झूठ?
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचा

0: चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि चौथी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया।
2: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
5: क्या खूब रंग जमा गया, जब पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया।
6: मशकूब भाई
7: जी जनाब,
6: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
7: लीजिए जनाब।
6: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो पैसे रखो
7: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
6: रखो रखो।
7: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
6: गर्मी में पानी पिलाया है तुमने। रखो, रखो।
7: शुक्रिया
6: शुक्रिया।
5: अमृत वाला आ गया।
8: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
9: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
6: मशकूब भाई
7: जी जनाब,
6: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
7: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
6: लाओ। बस बस,
7: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।

0: यही कहा मशकूक भाई।
1: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
0: अभी तक तो कुछ नहीं।
1: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
0: अरे नहीं नहीं
1: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
2: भाई
1: जी,
2: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
1: क्या बात करते हैं,
2: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
1: इसमें नेकी की क्या बात है?
2: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: ये तो मेरा फर्ज था।
2: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
1: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
2: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
1: ये तो बड़ा नेक काम है।
2: अब ये लीजिए।
1: ये किताब, ये किताब किस लिए?
2: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
1: अच्छा,
2: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
1: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
2: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
1: तौबा तौबा तौबा,
2: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
1: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
3: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
4: जनाब,
5: लाजवाब इंसान है वो।
3: क्या बात करता
5: है, क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
6: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
6: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
7: पैसा लाए हो?
8: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
7: मुंह है खाली, आप चले आते हो।
8: खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
7: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
8: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
7: बच्चे को गोद में उठाओ।
8: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
7: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
8: मर जाएगा ये।
6: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
9: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा

0: तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है, कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला, ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला।
4: क्या किया?

0: हम रितवाल आ गया। क्या खूब रंग जमाक।
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया। क्या खूब रंग जमाक।
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं।
0: या खुदा, माफ।
2: अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा, उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। अगला कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी मुंबई से, विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अब आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं, गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामची जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55।

0: हमारी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कैफी आजमी की गीत रचना SD बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: लिंग।
1: और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के, रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें

0: धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।